0: Katlang berjati lakan ngai thak tak kha Rebecca Sai moi sakani hei hi Akashvani Aizol ani Zingdar Riyad ania chanchin thar hindi a chair Delhi milak choni longai thlang u
1: के घर होके आया मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
6: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और

नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7। दोस्तों, और आपके साथ हिंदी के कंठ में फिर एक बार जुड़ी है आप सभी के लिए आप सभी के दोस्त अरजे वियली। और दोस्तों, आप सभी कैसे हैं और कल रात की नींद आप सभी की कैसी गई? और आप अपने अपने कामों में जाने के लिए आप रेडी हो चुके होंगे कब का, है ना? और मतलब सुबह के 10 भी बज चुके हैं और आप सभी अपने अपने कामों में पहुंच चुके होंगे और आप सभी ने तो शुरुआत भी कर ली होगी। तो उसी तरह हम भी अपने इस खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। और हमें इस खंड में, हिंदी के खंड में, आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा। और आज हम अपने इस दिन की मतलब दिन को बहुत अच्छे से बिताएंगे दोस्तों। हंसी मजाक और प्यार भरे बातों के साथ दोस्तों। तो चलिए, और वैसे भी कल तो छुट्टी होगा। वीकेंड आने वाला है, तो चलिए हम चलते हैं इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। और मैं सबसे पहला इस खंड में आप सभी को सुनाना चाहूंगी बहुत ही प्यार भरा, प्यार कोई खेल नहीं से। चलिए शुरुआत करते हैं इस खंड का, और मेरी तरफ से ये बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी को पसंद भी आया होगा दोस्तों। यस, तन्हाई तन्हाई, यस तन्हाई ऐसा चीज है जो जब हम हमसे हमारे बहुत ही स्पेशल दोस्त छोड़ के चले जाते हैं तो हमें तन्हाई सा महसूस लगने लगता है। लेकिन मैं आपके तन्हाई को, मैं मतलब आपको तन्हाई से मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, आपका साथ दूंगी पूरे 2 बजे तक। यस तो चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं और अगला गीत सुनाना चाहूंगी, तुम तो दीवाने हुए। यस, हम तो दीवाने हुए। यस, और यहाँ पर पएंग आरजीबीएल कमान वे एवीएल इमी अमीमल तक पोहियान इवाहन गई ओम तेरेंग एम अवन नाम छीन तक ए मिन लौ गाई मो पएंग के पो चान मारी कोन मानी कनि मु ना आ खान मो करोन थेन पे अ प्या ख्यान कशे छुक वे सचे नि मो कलौ थी रु रिंग छीन से निया ओ तक तक दोत सई म्या लविन चान sang hian nal ve zing atang in ka lo ngai thachar char nia film in tm e fel tuk la la pr ka zir a tun lai chu ka ron lut man lo ma se ka ngai thla reng ania aron tia ni sang hian e na do in i pyar thina lo zir zir ro chuan el zet sai lo hian la van bu in chu la bot deu deu lo play la ma huni po ma muni pon na du ole kan tum ze lang mo deu deu kan play ang o chuan ma thua nga mission wing ki taraf se sandesh aaya hai aur unhone likha hai ki 10:30 ya office katran kanchan to a kathleng ve deu chia lo ngai tha ve nga le aron tia ni o avan chabe 10:30 ya office tan chu a to

왜 잘해매야 들어. 저리에 비탈 쓴데해. बहुत ही खूबसूरत गीत हम तो दीवाने हुए शायद आपको ये जरूर पसंद आएगा तो हम ऐसा मतलब अच्छे अच्छे गीत सुनाते रहेंगे आपको और मुझे संदेश भेजने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चाहती हूँ कि आज का दिन आप सभी के लिए अच्छे से बीते अपने काम अच्छे से करते रहे है ना यस तो हम भी अपने खंड के आगे की तरफ चलेंगे और गीत सुनाना चाहेंगे आप सभी को तो चलिए सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत हम तो दीवाने हुए यस किसके दीवाने हुए दोस्तों मैं तो आपके दीवाने हुई हूँ और क्या आप किसके मतलब किसके लिए दीवाने हुए हो तो चलिए सुनते हैं ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम

मेरे प्यारे दोस्तों, यस, बहुत ही खूबसूरत गीत जिए तो जिए कैसे जिए आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यस, अब हम चलेंगे आपके प्यारे भरे संदेश की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। अब हमने सुन लिया है जिए तो जिए कैसे जिए, हम जिएंगे दोस्तों। यस, हमें जीना है उनके लिए। तो चलिए हम चलते हैं बहुत ही प्यार भरे संदेश की तरफ। और ओ तो किंतु कछियान कछियान मई एम एम फिल कती एम एम मई तेमा बोक्सी सी ली रही ओ जामही कछियान पा जामही अरे ए मई मैसेज मिलो थोन लगे चन का किम लाओ तब मई निगे माही मो ओले तुचवान पाकूंगा की तरफ से संदेश आया है आर जे एम आई तर्जन खा ngai thak ve thaim le ka vai la shat ve chuna ni a aron di ni e kha i vai la shat chun chu ingai kha thai tura be seng o ma se vai la ni la wa hin ti la

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस खंड का जो भी गीत हमने आपके लिए पेश किया था वो गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों, यस, मैं चाहती हूँ कि हम आपस में, यस, हमेशा प्यार बरसाते रहें। दोस्तों, यस, लिम द विन हुनी मांगले आंगू ओ लिम ही अपोई मो आ इन मांगे तोन ते ही अपोई मो आ इन दू सक तोन ते ही अपोई मो नी है ना। यस, तो मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे का दिल दुखाएं, है ना दोस्तों। यस, तो माही एंगे अनरिल रुना जोंग तेन चोंग लविला त्रो। तो आप सभी मुझे सुन रहे होंगे और मैं जाते जाते आप सभी से ये कहना चाहूंगी दोस्तों कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना दोस्तों। यस, मी वा जज

0: हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM सोय 100.7। दोस्तों, और हिंदी के खंड पे आपके साथ फिर एक बार जुड़ी है। आप सभी को गीत सुनाने के लिए हाजिर हैं दोस्तों, आप सभी की दोस्त RJ वीएली। और आप सभी का दिन कैसे चल रहा है और आप सभी का समय कैसे बीत रहा है दोस्तों? हमें उम्मीद है कि आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा। बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छे से दोस्तों। और हम स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का हिंदी के खंड पे। और आइए मेरे साथ हिंदी के गीतों की दुनिया में डूब जाइए, प्यार भरे गीतों की दुनिया में दोस्तों। RJ वीरे के साथ प्यार भरी बातें हम करेंगे दोबारा। जब RJ वीएली हाजिर होती है तो क्या होता है दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना? RJ वीएली जब हाजिर होती है FM 100.7 पर तो बस प्यार भरी बातें करने के लिए ही हाजिर होती है। हुआत न तेलो वो मंगई न थोरिंग अंगसी खा ओ हिंदी सेगमेंट अचवान कंती अंग कंती छीन खा तेरो। तो चलिए आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ दोबारा दिल से दोस्तों, और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत। और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का दोस्तों के भेजे गए संदेशों का इंतजार रहेगा दोस्तों। आइए आपके समय को और भी हसीन और अच्छा बना देते हैं इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। इश्क हुआ कैसे हुआ, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।
1: क्या
2: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
2: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
3: Yeah!

तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को इस खंड का सबसे पहला गीत इश्क हुआ कैसे हुआ। यस, आप सभी को उदित नारायण और विभा शर्मा के आवाज में गाया गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यस, इश्क हुआ कैसे हुआ, ये तो बाद में पता नहीं चलता है, इश्क जब होता है तो ऐसे ही हो जाता है।

कुछ सोचना भी मतलब जरूरी नहीं होती है, जब होता है तो हो जाता है। यस, तो हम चलेंगे अगले गीत की तरफ, और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, जाने दिल में कब से है तू। यस, जाने दिल में कब से है आप दोस्तों, मैं पूछना चाहती हूँ। आप इतने प्यारे हैं, आप इतने स्वीट हैं, आप इतने अच्छे हैं, हमें हमेशा संदेश भेजते हैं, हमें सुनते हैं, यस, प्यार भरी बातें करते हैं, तो इसलिए पता नहीं दोस्तों कि आप जाने दिल में कब से हैं। यस, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जाने दिल में कब से हैं, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जब से FM से 100.7 पर आपकी दोस्त आरजे वियली हाजिर हुई थी, आई थी, उस वक्त से लेकर आज तक आप हमारे दिल में समाए हुए हो। यस, हमें बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। आप सभी का इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे संदेशों का। और यहाँ पर मिंग मोइते की तरफ से संदेश आया है। मिंग मोइते क्या वाला, गुड आफ्टरनून अमोई गाले अरंतिया। यस, आपको भी गुड आफ्टरनून मिंग मोइते। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा संदेश आया है फिटनेस बॉय की तरफ से। फिटनेस बॉय यान बॉस प्ले मोई छीन है मैं इप्ले अप्ले तू अंग मई अनी आई अनुआ छीन। सारी लड़कियों में से मैंने तुम्हें ही चुना है, मेरी टेक्स्ट पढ़ने वाली, रोज बरोज तुम और भी खूबसूरत होती जा रही हो। वो कैसे फिटनेस बॉय, जरा बताइए वो कैसे? आपने मुझे देखा भी नहीं, मेरा शक्ल देखा भी नहीं, और स्टेटस में तो मैं तो शक्ल दिखाती भी नहीं, तो आपको कैसे मालूम हुआ कि रोज बरोज में खूबसूरत होती जा रही हूँ? आपको कैसे पता चला? यस। और यहाँ पर दूसरा संदेश आया है हमारे दोस्त नागालैंड की तरफ से, लेकिन मैं इनका संदेश बाद में पढ़ूंगी। और सीजित की तरफ से भी संदेश आया है, लेकिन पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, इंतजार करते हैं, और हमें पता चल जाएगा इस गीत के सुनाने के बाद कि वो क्या कहना चाहते हैं हमसे। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं जाने दिल में कब से है तू, मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को लता मंगेशकर जी और सोनू निगम के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाया गीत जाने दिल में कब से है तू। यस, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, आप मुझे अच्छे लगने लगे। यस, क्योंकि आप हमें अच्छे लगने लगते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं। यस, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। यस, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आपके संदेशों को पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और यहाँ पर हमारे दोस्त अपोंग की तरफ से संदेश आया है। हाय आरजे, गुड आफ्टरनून, दिस इज अपोंग, प्लीज प्ले अ ट्रैक ट्रैक टू रूठा दिल टूटा। टू रूठा दिल टूटा, हाउ स्वीट। तू रूठा दिल टूटा फ्रॉम याराना मूवी। आई वॉन्ट टू डेडिकेट टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड टू ऑल द लिसनर्स। यस, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मैसेज अपोंग, एंड लेट मी चेक इट आउट योर रिक्वेस्ट सॉन्ग फर्स्ट। ओके, इफ वी हैव दिस सॉन्ग आई विल श्योरली प्ले फॉर यू। ऑलराइट, यस, एंड सीज एट हियन चुआन तीचो अरुणोना कलौहाक में काम हसे। उन्होंने कुछ दूसरा मतलब लिखा नहीं, तो चलिए फिलहाल सी जिता चुआन चुआन इंगटिन जेल नियांग चुआन इंगटिन गे कंती जेल दोन ओले। और तो चलिए फिटनेस बॉय की तरफ से संदेश आया है, लेकिन मैं इनका संदेश इस अगले गीत के सुनाने के बाद पढ़ना चाहूंगी। और यस, अपोंग, आई विल सर्च योर रिक्वेस्ट सॉन्ग। ऑलराइट, आफ्टर दिस इफ वी गॉट योर सॉन्ग रिक्वेस्ट विल श्योरली प्ले फॉर यू। ओके, तो चलिए ये गीत आप मुझे अच्छे लगने लगे सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

यस आप हमें अच्छे लगते हैं और लगेंगे, हमेशा लगेंगे दोस्तों. यस और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारे साथ हिंदी के खंड में आप सभी को अच्छा लग रहा होगा. तो आइए चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी हमारे दोस्त यस फ्रॉम नागालैंड यस अपोंग का रिक्वेस्ट यस फरमाइश गीत मेरी तरफ से तू रूठा दिल टूटा. यस अगर जब हमारे कोई साथी दोस्त जिसे हम बहुत ही बेहद प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं दोस्तों, अगर वो हमसे रूठ जाते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है ना दोस्तों. यस शायद पता नहीं जाम अभी मुझसे रूठे हुए होंगे इसलिए वो मुझे संदेश नहीं भेज रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रूठी नहीं हूँ, किसी से भी हम रूठते नहीं हैं और मैं रूठूंगी भी नहीं. यस और आप भी किसी से मत रूठना, ठीक है. जब कोई रूठ जाता है तो दिल बहुत टूट जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता है दोस्तों. यस इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपका दिन यूं ही अच्छे से ना बीते किसी के मतलब किसी के कारण. तो चलिए तो चलिए यहाँ पर संदेश में पढ़ना चाहूंगी. एलबी रेंट है की तरफ से संदेश आया है. उन्होंने लिखा है कि आरजेवीएल प्लेलिस्ट अनल अनल इले नुरी अंग मई लोम इप्ले ले तुर खा इ राजा जा मता नो रोन त्यानी ए कवन लो मसे जा मखा का राजा चे अनि का राजा ओ अमा चे अखा नि खेर लवा नंग पोई नि वे थवा मो अमा का मंगा यांग खा नंग पो का मंगा वे थवा खति वेल खा गन नि मो एलबिरेंटे ओ बहुत बहुत शुक्रिया. और सिजतेहियान ओ कहला थन खा अरोंतिया ओ कनगाई थदोन सिजत ओ थोड़ा सा इंतजार करना मेरा, ठीक है. यस और फिटनेस बॉय की तरफ से संदेश आया है. फिटनेस बॉय लिखते हैं कि कवाई चोंग थिया मिन अदै तो लो अतिलेता वाई चोंग तिलो ओला हिंदी तिछिन रो ओ अछन चु वाई ने जोंग हियान हिंदी ही अंथियाम वक अंथियाम वे खेर लवनिया ओ फिटनेस बॉस ओ हिंदी ती तुर वाई नि लविन हिंदी चु इन शाद खा तरो कम नेशनल लैंग्वेज नि आ वाई खा वाई खा के मा नि मिजो हौना कन लमरिक दान खा नि मै ता वाई चोंग ती वेल मो सिर्वा सिर्व फूल की तरह सिर्व फूल की तरह कोमल और नरम फिटनेस बॉय थोड़ा इंतजार करना मेरा, मैं दोबारा आऊंगी आपके संदेश को पढ़ने के लिए, ठीक है. यस फिलहाल मैं सुनाना चाहूंगी हमारे अपों की फरमाइश गीत तू रूठा.

ठीक है, यस। मैसेज चुन लो, 9 डिलीट लेंगे जेल। ओ तो चलिए, अनिल एंगे अनिल नतिंगे फर्स्ट सेगमेंट आ इरन चोंग लो न्या वइन चु आ बॉय था खोप मै मो अले एंग पनि से लेकिन अगर उसे दोन से न्या फिटनेस बॉय तो चलिए सुनते हैं मेरी तरफ से रुक जा और दिल दीवाने सिजित की तरफ से फरमाइश की मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को उदित नारायण की आवाज में गाया रुक जाओ दिल दीवाने, यस, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और ये गीत यस फरमाइश किया गया है सीजेड की तरफ से। और तो चलिए, यहाँ पर दुर्गेश जी ने बहुत ही ज्यादा गीत फरमाइश की है और उनके फरमाइश गीतों में से मुझे ये गीत मिला है, यस, दिल से जुदा, यस, ये गीत चलिए मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गीत जरूर पसंद आए। तो चलिए सुनते हैं दुर्गेश जी के फरमाइश की दिल से जुदा, आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा. और आपसे बातें करते करते दोस्तों, कब हमारा ये जो समय है कब बीत गया ये हमें मालूम ही नहीं पड़ा दोस्तों. यस, इसलिए तो हम कहते हैं कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और जब आप हमें संदेश भेजते हैं तो हम पागल से हो जाते हैं, ठीक है. यस, और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे गीत सुनाने का बहुत ही हमें अच्छा लगता है, और आपकी फरमाइश भी बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन मैं दुर्गेश जी से कहना चाहूंगी कि जब मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने हिंदी के खंड को लेकर, आपका ये जो फरमाइश गीत है ना, हम शुरू से लेकर हम अंत तक सुनेंगे, ठीक है. फिलहाल में एक गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है, वो है जलवा गीत से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी. उदित नारायण नहीं, यस, कुमार सानू और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत है दोस्तों. यस, और अगले खंड पर आपके साथ जुड़ने के लिए यस मिजो लव सॉन्ग यस सुनाने के लिए आपकी दोस्त आरजे मापुई आप सभी के लिए हाजिर होगी. तो हम चलेंगे इस आखिरी गीत के साथ और वापस आएंगे 1:50 पर, और 2:05 तक आपका साथ देने के लिए दोस्तों. यस, तो चलिए आप सभी अपना समय अच्छे से बिताते रहिए, और यस हमेशा खुश रहिए, ठीक है. यस, और मैं आप सभी से कहना भूल गई थी कि आप सभी ने आज का दिन एक मुस्कुराहट के साथ, बहुत ही सुंदर वाला, खुशी वाला मुस्कुराहट के साथ शुरुआत की है या नहीं. अगर नहीं की है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं दोस्तों. हमें नया दिन मिल जाता है ना दोस्तों. यस, किसी से प्यार करने के लिए, किसी से प्यार भरी बातें करने के लिए. तो चलिए ये प्यार भरा गीत जलवा मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और मिलते हैं दोस्तों. आप सभी का इंतजार रहेगा, और दिल से शुक्रिया अदा आप सभी के सपोर्ट और संदेश के लिए. तो मेरी तरफ से ये प्यार भरा गीत आप सभी के नाम.

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को. आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 दोस्तों, और हिंदी के खंड पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ. और ये खंड जो है दोस्तों हमारे लिए आज का

आखिरी खंड है। यस, आपसे तो विदा लेने का मन नहीं करता है, लेकिन दोस्तों इसके बाद हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे दोबारा किसी और दिन कुछ नए गीतों के साथ। तो चलिए हम इस खंड की शुरुआत करते हैं कुमार सानू की आवाज में गाया गीत ओ जाने जिगर, मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को उदित नारायण नहीं, यस, पता नहीं है कि उदित नारायण जी के मतलब उदित नारायण जी का नाम हमारे दिल में क्यों ऐसा भरा हुआ है. यस, लेकिन वो इतना अच्छा गाते हैं, क्या करें, है ना. तो कुमार सानू और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाया गीत आप सभी को, यस, ज़रूर पसंद आया होगा गीत. तो चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं. और अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, आपका आना दिल धड़काना. यस, कुमार सानू और अलका याग्निक के ही आवाज़ में गाया गीत है दोस्तों. यस, शायद आप अपने अपने काम पर बिजी होंगे और हमें सुन भी रहे होंगे अपने काम करने के साथ साथ, है ना दोस्तों. यस, तो कहते हैं कि आंखों ने तुम्हें देखा था और दिल ने तुम्हें पसंद किया था, अब तुम ही बताओ मेरी जान, आंखें निकाल दूं या दिल. तो मैं तो आप भी इस तरह अपने किसी प्यारे से दोस्त के साथ, मतलब दोस्त को पूछिए कि दिल निकाल दे या दिमाग, ठीक है. यस, हम जिस इंसान को इतना पसंद करते हैं कि उन्हें, मतलब हम चाहते हैं कि उन्हें भूल जाए, मतलब एंडिंग के बाद, मतलब रिश्ता ख़त्म होने के बाद, लेकिन उन्हें भूल नहीं पाते हैं. तो चलिए, खैर जो भी हो, मैं उम्मीद करती हूँ ये गीत आपको पसंद आएगा. तो चलिए सुनते हैं आपका आना दिल धड़काना, मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आपका आना दिल धड़काना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गायक गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अब मैं आप सभी से इस खंड का आखिरी गीत आप सभी को सुनाकर यहां से अलविदा कहना चाहूंगी दोस्तों। यस, और मैं चाहती हूं कि आप यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, यस, खुशी खुशी अपना समय बिताते रहे दोस्तों। तो चलिए, आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM से 100.7 दोस्तों, और FM से 100.7 को जो भी प्यार करते हैं, जो भी हमें सुनते हैं दोस्तों, उन सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। और आज तो मैं मायूस नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ मेरे दोस्त अजामत से, क्योंकि उनका संदेश आया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। मैसेज का दोंग लाउ मया से पै लाउ अमो सपो का दोंग लवा से मिलाऊ थाउंग हिजू करिंग थाउनी। और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश और अपना समय अच्छे से बिताते रहे। यस, मेरा मतलब मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे अपने दोस्तों को देना चाहूंगी, और आपको भी दोस्तों। यस, मैं आपको, हम आपको कभी नहीं भूलते, हम नहीं चाहते कि आपको ऐसा, मतलब आपके साथ कोई मुसीबतें आए। यस, आप हमेशा अपना ध्यान रखना, आप कहीं भी जाएंगे ना दोस्तों, यस, आप हमेशा ख्याल रखना अपना, और सावधानी से यस अपना समय बिताना दोस्तों। यस, जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, कब क्या पता क्या हो जाए हमारे साथ, कुछ नहीं पता चलता है ना दोस्तों। यस, तो चलिए मैं बस जाते जाते कहना चाहूंगी, आप सभी अपना ख्याल रखिए और हमेशा एक दूसरे से प्यार करिए। लविन मंग तो एम एम मई उला ओ छियानते नेनते दू तक नेनते ओ यस लविन मंग तो जेल उला लविन श्याम तो उला सुन यस सोई तुरतम बहुत कुछ है दोस्तों आप सभी से कहने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है आपसे बातें करने के लिए। अब इस आखिरी गीत के साथ दोस्तों विदा लेना चाहूंगी। आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 और हिंदी के खंड में आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त RJ वीएली। तो दोस्तों, जब तक हम नहीं मिलेंगे, आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है। यस, तो ये गीत मेरी तरफ से शुक्रिया आप सभी के नाम, और RJ वीएली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बाय गुड।

0: kanekleta
1: Yakashwani Aizol FM zo oiza point pasari achinga pon chwa ani suti zong chu vo in jo mir khan som phe pathi zirtop ni a FM zo oi achinga kun thok khan ta kan ti chwa the zo ani a ai thadu te chu alom thu kan se seeming thang sangi kan a control room engineer duty na ring ti ki ani kan hun thok ni kan hun thok ni na hi prai dar li le ni som phe pariyat achinga kan chan le anga la wai khale chup don ya ai thadu zong zong te hun man nuam tak kule
2: मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
3: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
3: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय पहली जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। न्यायालय ने इन चुनावों को दिसंबर तक स्थगित करने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने 11 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research, and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Prime Minister Modi said during the meeting they also discussed global issues.
3: Bharat aur Cyprus ke beech ye strategic partnership dono deshon ke financial aur services hub ko jodkar कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: President of Cyprus Christodoulidis said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year. The President of Cyprus is on a four-day visit to India. He will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.D. Devegowda, Union Ministers George Kurian and Ravneet Singh are among the members who are completing their terms next month. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत करती हूँ आकाशवाणी आइजोल एफएम जो 100.7 पर। मैं हूँ एंजिला। दोस्तों, इस सेगमेंट में, ये जो हमारा सेगमेंट है, इस हिंदी का हमारा पहला सेगमेंट है, इसमें हम बहुत ही सुंदर सुंदर गाना सुनने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस सेगमेंट का गाना जो है देखा रास्ते। इस गाने को लिया गया है हम तुम और घोस्ट मूवी से।

दोस्तों, ये गाना था धड़क, और धड़क मूवी से ही ली गई थी ये गाना, और इसको गाने वाले थे श्रेया कर्माकर। अगले गाने की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, आपके संदेशों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हितेंद्र दास जी मैसेज करके भेजते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ बहुत ही बारिश हो रही है, आप महफूज रहिएगा हितेंद्र दास जी, यहाँ भी बहुत बारिश होती है। ललितिन बुया फलकोनिन आरजे इप्ले ले तुर्खा नंगमा तान ले लौंगाई थवे जोंग जोंग तान अरुणत्या कचियांते दोर पुय मीते तान ले पापा रे पुतान कुंगते तान गे वाल तान ले मिंग मोई ते तान ते अरुण थलंगनी वी कुंगते अन आरजे इंजला त्वांग तकिन लो ड्यूटी ला ते मत किन का मैसेज ते लो छियार जे लंगजे ओ ड्यूटी नाम ले अरंत्या ए लो थोन चुर चुर लगन छियार चुर चुर दोन्या ओ। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला गाना है सुनिधि चौहान और सोफी चौधरी की आवाज में, और आप सुन के बताइएगा कि गाने की बोल क्या है। तो दोस्तों, हम अपने अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

दोस्तों, ये गाना था इट्स ऑल अबाउट टुनाइट, और ये गाना लिया गया है इश्क इन पेरिस से। और इस गाने को दोस्तों गाने वाले हैं सुनिधि चौहान, सोफी चौधरी और राहुल ने। आइए दोस्तों, हम अपने अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला गाना होगा कुर्बान हुआ, और ये गाना जो है इसी टाइटल ट्रैक मूवी से लिया गया है जो कि कुर्बान है। और ये गाना हम डेडिकेट करने वाले हैं सांग सांगा के लिए। तो दोस्तों, हम गाना सुनते हैं सुलेमान की आवाज में, कुर्बान हुआ।

दोस्तों, ये गाना था कुर्बा हुआ, जिसे गाने वाले हैं सलीम सुलेमान। हमारा अगला गाना दोस्तों बहुत ही सुंदर होने वाला है, लेकिन इस गाने की ओर बढ़ने से पहले हम आपके संदेशों को पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले मिंगमोइतेया भेजते हैं आरजे एंजिला नमस्ते द्युति नामले अरुंत्या, थैंक यू लुत्तुक मिंगमोइतेया। विकुंगतेयान इप्लेले तुर्खा दिनपुया फलकोन जुइतेया छांगते मुथी ओमेगा सांगतेया मिंगमोइतेया ले नुरितान अरुंत्या चौन सांग सांगन नंगमातान अरुंतिया कट प्ले ले तुरही, थैंक यू लुटोक सांग सांगा। चलो दोस्तों, हम अपने अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला गाना होगा आजरा, जिसे मर्डर 2 मूवी से लिया गया है।

दोस्तों, ये गाना था आज जरा, जिसे मर्डर टू मूवी से लिया गया है, और इसे गाने वाले दोस्तों सुनिधि चौहान। हमारा अगला गाना इस सेगमेंट का आखिरी गाना होगा, और इसी के साथ हम आपसे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस सेगमेंट के लिए अलविदा लेना चाहूंगी। हम दोबारा फिर जल्द मिलेंगे। मेरे बार आने वाले हैं इंग्लिश आरजे। हमारे अगले गाने को सुनने से पहले हम आपके संदेशों को पढ़ना चाहेंगे। सीजन मैसेज रोन्थोना एंजल गेंगे चू ओफोपो दंग लम दिन कश्या चुत वेंजु का ओ ही अचांग दे उल्लिका छोन चांग खान शितलांग ओम नाइन मिन मन वे आ मिन लव गाय दम शाम शाम दोन या ओ सीजन। हमारा अगला संदेश लोमा की तरफ से आया है। लोमा भेजते हैं आरजे एंजला इला प्ले ले तुर खा कम एम एम लोमितान अरोंतिया छलुतुक रोनथुम एम एम तुर ने मंगई दे तान पो मैसेज ते इन ड्रोप रिंग थे अगन छा छुआ सक रिंग थे चेउती खा इन लोशर रिंग दोनिया। तो दोस्तों, आप सभी सुनेंगे हमारा अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में तेरे बिना, और ये इस सेगमेंट का हमारा आखिरी गाना होगा। दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं FM जो 100.7 में हूँ आरजे एंजला। हम दोबारा जल्द, बहुत जल्द मिलेंगे।

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं दोबारा स्वागत करती हूँ एफएम जो ओए 100.7 पर। मैं हूँ आरजे एंजला। आप सभी से दोबारा जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ये खुशी इस बात की भी है कि दोस्तों हम इस सेगमेंट में बहुत ही सुंदर सुंदर गाना सुनने वाले हैं। हम सुनेंगे एआर रहमान और नीरज श्रीधर की आवाज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एआर रहमान की आवाज में तू ही रे।

दोस्तों, ये गाना था नाजनी सुनोना, और ये गाना इस गाना इस गाने के गायक का नाम है दोस्तों A.R. रहमान जी। हमारा अगला गाना होगा कौन है तू, जिसे गाने वाले हैं नीरज श्रीधर।

ka zani na ka shwani lung le announcer meri la rat pui tan oron dia announcer duty day she thei sia ming pum ne lam hian she thei vel sia ve kong te zong soi tak ang le mi zong zong shat luk lo rim he zona mani tra alai hey ke ngai den ron in soi fya nga la nia fm a hian ka tam lo ta deu ni e chan chu mobile app changin fm ka ngai thasi a chati line ओ अपोय मोल तो खेही ऑनलाइन करम खेल गलो तुइ दे नेन खै कप थैसि ल वांग नि एरोन थिया नि ए करम हिन वार को पतरो थोकन ला खन के पोहन खेल वे ना प खेरेले त चोंग लेम नै ल वा अले इंग पुनि से जाय कन गाय का छुन जम ने गा ल लुंग रुन कन ति हौ दो नंगा ल ब्याक छुंग इन हेला हिरन सडोन नि एफएम जो ओइजा पॉइंट पसरि मिङाय ता तो जोंग जोंग ते इन तान ग्रन ला ने

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM जो ओए 100.7। मैं हूँ एंजिला। आप सभी मेरे साथ फिर दोबारा जुड़ गए हैं इस रात के हमारे हिंदी आखिरी सेगमेंट पर। दोस्तों, सबसे पहले हम सुनेंगे जन्नत मूवी का जरा सा गाना, जिसे गाया है प्रीतम और KK जी ने।

दोस्तों, ये गाना था जन्नत मूवी से जरा, और इसे गाने वाले हैं प्रीतम और के। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला गाना होगा काला चश्मा, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये गाना आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो दो

दोस्तों, ये गाना था काला चश्मा। दोस्तों, आजकल गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और किसको काला चश्मा लगाना पसंद नहीं है, बताओ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आप सभी को कि जब आप धूप में निकलो तो काला चश्मा लगा के घूमो और इस गाने को गुनगुनाओ। आइए दोस्तों, हम अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला गाना होगा रेस मूवी से लत लग गई। हम सभी को, आप सभी की लत लग चुकी है श्रोताओं, तो आप सभी गाना सुनते रहिएगा लत लगी, जिसे गाया है बेनी दयाल और श्यामली कोलगाड़े ने।

दोस्तों, ये गाना था लत लग गए और ये गाना लिया गया है रेस 2 की मूवी से। हमारा अगला गाना होगा बहुत ही फेमस मूवी से जो कि कुर्बान मूवी है और ये गाना इसी मूवी का टाइटल ट्रैक सॉन्ग है और इसे गाने वाले हैं सलीम सुलेमान। तो आइए दोस्तों, हम गाना सुनते हैं कुर्बान हुआ।

दोस्तों, ये गाना था कुर्बान हुआ। जिस तरह हम आप सभी श्रोताओं पर कुर्बान होते हैं, उसी प्रकार हम वही गाना आप सभी को सुनाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला गाना होगा बे इंतहा, जो कि रईस मूवी से ही लिया गया है। तो दोस्तों, सुनते हैं आतिफ असलाम की आवाज में बे इंतहा।

दोस्तों, ये गाना था बे इंतहा। हम सभी को आप सभी से बे इंतहा मोहब्बत होती है, तभी तो आपके संदेशों का हम बे इंतहा इंतज़ार करते हैं। आप सभी सुन रहे हैं FM जो ओए 100.7। मैं हूँ एंजिला। आप सभी से एक बार फिर जुड़ने के लिए मैं हमारा आखिरी गाना मैं प्ले करने वाली हूँ, और ये आखिरी गाना दम मारो दम मूवी से लिया गया है। दोस्तों, इस गाने की बोल है TMO, और इसे गाने वाले हैं सुनिधि चौहान और ऐश किंग। और इस गाने के साथ दोस्तों, मैं आज की रात के लिए अलविदा लेना चाहूंगी। मेरे बाद और दो आरजे आने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान और ऐश किंग की आवाज में TMO।